0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री शांति प्रयास के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेवोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिबा मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एंड बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सक्षम काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ टॉकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क रूटे की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े पांचवें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए। ग्राम विकास मंत्री ने कहा कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना

0: योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्म मंत्रण मामले में 1,505 का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच के प्रमुख संदीप बटके ने बताया कि कचार आरोपियों मतीन पटेल, निदान दानिश शेख और तौसीफ अधर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी से चंद्रपुर केंद्र है। सकाळ 6:05 मंगल भात भक्ति संध्या कार्यक्रम प्रसारित करीत आहोत।

0: घर में भी बनाकर वही बिजली बचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता।
1: भाग के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका अब दिखने लगा है। भारत में एक एक कर 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके। आप भी ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवीन निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल निशिक टीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी। होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य और पूर्वी भारत में आज भी लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फ्रेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 6 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिक पालिक क्षेत्र में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। स्वर्णा सैकी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्षे मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्र वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्हें भारत को अमेरिका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की स्पोर्ट एंड बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
4: हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसे भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत

0: क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर करेंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 113 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार कालीपोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: We all know that under visionary
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त करते हैं।
1: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मौसम नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जून तक मौसम नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इसमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल है। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगार भत्ता देने भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी 2025 को इस महीने 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्य आकाशवाणी समाचार दी।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप टके ने बताया कि कल चार आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं, तो समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए समाज सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
6: योजना उन जवानों के हैं कि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा गौरव के साथ जा सको।
5: अब तक इस योजना से 8.50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू में खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते के बारे में

0: इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल युद्ध विराम सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाह की नाकेबंदी के कारण ईरान हॉर्मुज जल डमरू को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावट ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रहे। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अमेश कुरूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में अब 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पल्स पद के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार जेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है वे आज और सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। अब आज के समाचारों की सुर्खियों के साथ फरत नाज।
2: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के दौरे को भी अखबारों ने प्रमुख से प्रकाशित है। हिंदुस्तान कहता है मोदी मिले रूबियो, अमरीका आने का नहीं होता। नव भारत के अनुसार रूबियो मिलकर पीएम बोले बात से निकले संकट का हल। रूबियो की भारत यात्रा दैनिक जागरण अपने संपादकीय मिला है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ता ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये योजना वक्त की नजाकत को देखते हुए सचिन है कि भारत की आवश्यक है। अखबार के अनुसार घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपना समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में। पंजाब केसरी के अनुसार सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर शीट की साइन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश बड़ा हिस्सा भीषण लू की पेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर रहा है बुरा असर। पद ने चिकित्सकों की सलाह को भी मुख्यता दी है, गंभीर दर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजन पत्रिका ने वैश्विक अध्ययन प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने

0: भारतीय स्कूलों की जीत आते हुए है दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाली विद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो के द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल हुए। महाराष्ट्र विशेष दल ने शिफ्ट दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के समझौते काफी हद तक सहमति बनी होर्ज जलमरु मध्य फिर से खुलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तर मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की और गुरिंदर सिंह ने रांची में एडिशन का एथलेटिक्स राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 दौड़ में पदक जीता। इसके साथ समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी हे चंद्रपूर केंद्र सकाळचे 11:10 मिनिटे प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल क्वेश्चन है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: अब सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की गाने आपको सुनवाए।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी या किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अब यात्रा शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ठेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छाए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल डोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत
1: तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
0: बातें जो देती हैं हौसला शब्द जो देते हैं सुकून
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है जीत है
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
1: तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी
1: तुम आ गए
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर

0: थे। बड़ा अच्छा लगा मेरे को उसका ये वाक्य, ये तो दोस्त है तो अपन 50-100 दोस्त चंद्रपुर में बना लेते, मगर ये जो रिश्तेदार है कुछ है जब ये अपने ये आए ना अपने जीवन में, ये नहीं तो कहाँ से आए, इतने सारी दुनिया इतनी बड़ी है, इतने करोड़ों लोग है इसमें, इनके साथ में अपना तो इसलिए इसके भी पीछे कुछ ईश्वरी संकेत है ताकि अपन उनके उनके साथ में अच्छा रहे ना।
1: नहीं यही सोच के हमारे त्योहार या हमारे शादी ब्याह के जो भी रिवाज है वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि उस बहाने हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के घर जाए।
0: अब जीवन में वही तो काम में आता ना,
1: बराबर
0: वो जो मिलते हैं अपन बातचीत वही चीज बहुत काम की है, वो ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है मगर ये बहुत जीवन में काम में आती है। आपके अगर कुछ खराब तंग आ गया, आपको कुछ तकलीफ गई तो वो उसमें आपको ये करने को मिलता है क्योंकि 10 टाइप के लोग मिलते हैं तो उसमें अपने को सीखने को मिलता है, नहीं तो अपन अपने मन में समझेंगे लेंगे कुछ भी, पर वो जो अपन चार लोगों में जो रहते हैं ना तो वही तो है मेन सीखने का वही है। दूसरी बात क्या है कि आपके जो रिश्तेदार है कोई कहाँ के है, कोई कहाँ के है, कोई कलकत्ता के है, कोई दिल्ली के है, कोई बेंगलोर के, एक साथ में जमा हो जाएगी, मिलेंगे करेंगे वो तो गेट टूगेदर, तो उस वजह से एक में की जो जान पहचान नहीं रहेंगी तो फिर भूल जाऊंगे ना, ऐसा हो जाएगा क्योंकि सब अपने काम में व्यस्त रहते, शादी ब्याह में आएंगे सबकी मुलाकात होंगी तो अपने ताजा हो जाती सबकी यादें, याद आता गए अपन मिले थे ओवर करके।
1: आता असे प्रसंग कमी आहे जेव्हा सगळे जण आपण एकत्र येतो, कारण प्रत्येक जण इतका बिझी झालेला आहे आपल्या कामामध्ये त्याच्यामुळे एकमेकांच्या घरी जाणं येणं सुद्धा कमी झालेलं आहे, तर हेच असे प्रसंग आहेत लग्न समारंभ ज्याला म्हणूया ज्याच्यात आपले सगळे नातेवाईक एकत्र येतात आणि त्यावेळी मग पुन्हा आपले ते आनंदाचे दिवस आपण आठवतो। खरं तर लहानपणीच्या पासूनचे सगळे नातेवाईक एकत्रित जमतात। कुटुंबात कोण कोण आहे सध्या?
0: पर्सनल तो हमको दो मेरे दो बच्चे है, दो लड़के, दो बहू है
1: और यहीं पे रहते हैं,
2: साथ में ही है।
0: दो लड़के, दो बहू, साथ में।
1: अगर आप पीछे देखते हैं ये 55 साल आपने साथ में गुजारे हैं, इन सब में कौन सा वो पल है जो आपको अभी भी बहुत ज्यादा खुशी का लगता है, सबसे ज्यादा खुशी का कौन सा वो क्षण है?
0: मुझे तो जब पहली बार हमारे बड़े लड़के की सगाई करने के लिए हम जा रहे थे ना, सबसे यानी ये लगा बहू के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
2: उसको बेटी हुई जाओ। हाँ, पहली बेटी हुई जाओ।
0: फिर अभी दो लड़कियां थी, नातू हुआ।
1: अच्छा,
0: 2 सालों के बाद में।
1: हाँ, हाँ,
0: जब सबसे ज्यादा खुशी हुई,
1: यही पल हम संजोते हैं। हाँ, जो है
2: तब तो ऐसा लगता था कि वाह आपने कहाँ चले गए अपन।
0: तो जुराती समाज में जो मैं ही हूँ, जो पहला जो मेरी बहू को यहाँ मैंने पढ़ाया, बीएड कराया,
1: वाह
0: शादी के बाद में।
1: हाँ,
0: इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया हुआ है उसने, तो मैं बोला तेरे को पढ़ाई करना है, बीएड करना है? हाँ पापा। बोले मैंने तू बीएड करेंगे तेरा एमए ईएलटी का फायदा रहेगा, तो ठीक है बोले। मैंने ठीक, बीएड में जनता कॉलेज में एडमिशन कराया, कॉलेज जाती थी, ये भी परमिशन दिया। बोले नहीं कोई बात नहीं, कॉलेज जाने दो। बोले मैं घर का काम सब कर लूंगी करके, और उसको पढ़ाया तो आज उसकी क्या है, उसका ट्यूशन क्लासेस वगैरह के उसका अच्छा नाम हो गया बीएड करने का, तो उस वजह से उसको भविष्य में कम महंगा।
1: बराबर,
0: वो तो नहीं पर अपने बच्चों को तो कम से कम अच्छी तरह से पढ़ाएगी।
1: बराबर, हमारे साथ साथ हम पूरी फैमिली का भविष्य भी अच्छा बनाते हैं।
2: अच्छा।
1: तो वही होता है, घर का वातावरण है अगर वो अच्छा रहा तो बच्चे भी
2: अच्छे रहते हैं
1: और वो सब कुछ सीख पाते हैं और उस खुशी से सीख पाते हैं।
2: दोनों बेटियां, दोनों बहू, दोनों मस्त बढ़िया एकदम है।
0: पहले घर ही ऐसा जहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है, घर में ही अगर वातावरण अच्छा है तो बच्चे आगे जरूर बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: अगर घर में आपस में ही अगर मेल नहीं है सब भाई में या जैसे माँ बाप में या इसमें वगैरह, तो वो बच्चे
2: कभी मेरे घर में झगड़ा नहीं
0: हो जाएगा ना, ऐसा
2: दो बेटे हुए दिनों वो कभी झगड़ा नहीं करेंगे।
0: उस वजह से बच्चों को घर का ये जो शिक्षण मिलता है वही काम में आता है। पहली पाठशाला घर ही है ना, बोलते ही अपने में
1: घर ही हमारी पहली पाठशाला है, वैसे वहाँ से ही पूरा शिक्षण शुरू होता है।
0: मैं कम से 25-30 साल गुजराती समाज का सेक्रेटरी रहा, गुजराती समाज का प्रेसिडेंट रहा, लोहाना समाज है हमारे उसका प्रेसिडेंट रहा।
1: अच्छा।
0: रोटरी क्लब में मैं कितने साल काम किया, और चेंबर ऑफ कॉमर्स में मैं सेक्रेटरी था, बहुत सारे काम किए।
1: हाँ।
0: हनुमान मंदिर गोल बाजार का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हाँ। तो कहने का मतलब कि मैं भी इस काम में भी थोड़ा सा दुकानदारी के साथ तो साथ में इसमें भी 25 साल से समझो मैं कुछ ना कुछ दोनों भी काम है।
1: हाँ।
0: लोगों की जान पहचान भी होती है, लोगों से रिलेशन भी आते हैं।
1: हाँ,
0: और सब जब गए तो सब पहचानते हैं किस तरह से, कहीं कुछ रहा प्रोग्राम रहा तो अपने को इन्वाइट करते बुलाते, तो अच्छा लगता सब लोगों में। खाली जमा करो जमा करो जमा करो करने वाले क्या है, वो फिर आखिर में वो भोग नहीं सकते, वो जमा करने वाले उसे नहीं खाएंगे
1: क्योंकि पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जाती।
0: नहीं, वो क्या कबीर जी का दोहा है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर आप कपूती है तो आप क्यों जमा कर रहे हैं?
1: बराबर है।

0: वो तो
1: काम है,
0: सबूत है तो कमा लेगा, आप क्या को जमा कर रहे हैं उसका ऐसा।
1: इन सब महानुभावों के विचारों को देखकर जब हम चलते हैं तो ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है।
0: चंद्रपुर में आज इतने साल हो गए ना, कैसे कई बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े हो गए, आज उनके बच्चे ये लाइन पे लग गए सब पूरे, और कई कितने कैसे छोटे छोटे थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इसलिए समय का चक्र है ये, तो ये कुछ बोल नहीं सकते कल क्या होने वाला है करके।
1: बराबर।
0: इसलिए आप कोई अभिमान या घमंड वगैरह वाली करते हो तो वो तो आपके लिए बेकार है, आपके आपके तबियत के लिए भी बेकार है, सबके लिए बेकार है। सबसे मिलजुल के रहोगे, अच्छा रहोगे तो कौन किसी का क्या लेने वाला है। जो है जीवन है ये खाली पैसे नहीं है। ओशो रजनीश का जो वाक्य रहते ना, वो बोलते कि अपन जी नहीं रहे, बोलते अपन सोचते अभी नहीं, थोड़ा 25 साल में शादी करने के बाद में जीऊंगा मैं। बाद में बोलते अभी नहीं, तो बच्चे हो जाएंगे बड़े, 50 साल के बाद जीऊंगा मैं। जीता ही नहीं आदमी, ऐसे ही चले जाता है। कल करूंगा, कल आता ही नहीं, आज ही रहता है। तो इसलिए अगर आपको समाधान होना, जीवन जीने का ऐसा लगना चाहिए, तो फिर पैसे के साथ साथ में ये भी जरूरी है, नहीं तो।
1: 55 सालों की तरफ आप जब देखते हैं तो क्या लगता है, कैसा था आपका सहजीवन, कैसा था, आप समाधानी हैं उसमें?
0: सहजीवन बहुत अच्छा था, सब दुनिया ये ईश्वर की दया है, आज अपन अच्छे हैं, अपनी तबियत इतने साल होने के बाद में भी अपने को तकलीफ नहीं है कुछ भी। बच्चे सब अच्छे है, निर्वसनी है, निर्वसनी हमारे बच्चे, तम्बाकू नहीं खाते, पान नहीं खाते,
2: सुपारी नहीं खाते,
0: पूजा के बिना तो पानी नहीं पीती, वो जावाई भी इसी टाइप है बिल्कुल। बस यही तो दौलत है
1: आपके सहजीवन में, ये सब लोग बहुत मायने रखते हैं।
0: सभी अच्छा है।
2: एकादशी करते 15-15 दिन को, शनिवार करते,
0: और क्या होना आपको।
2: उसकी बेटी अभी अच्छी है।
1: कोई एक चीज पसंद है जो दोनों की भी पसंद है? ऐसे
0: कॉमन पसंद जो की तो बस यही परिवार, ये समझो ना, और क्या। बहू ने कुछ बोला तो फिर पहले वो करेंगे, वो
1: एक दूसरे के पसंद,
0: बोला कि आज ऐसा नहीं करने का, दम मम्मी ऐसा करने का, तो पहले करेंगे। वो ज्यादा उसको मान देती, बहुए भी मान देती, ये भी उसका जैसे लड़की से ज्यादा, बहुए लड़की से भी ज्यादा।
1: लेकिन बच्चों से पहले जब आप सिर्फ दोनों ही थे, तब एक दूसरे का ख्याल कैसे रखते थे?
2: अरे तब तो इतना काम था घर में, वो तो काम में घर में
0: बिजी सब घर में, कोई पहले कहाँ, कोई फुर्सत ही नहीं थी।
2: सास पहले जमाने
0: बहुत काम रहता था,
2: वो आजकल के जमाने में नहीं थे ना, उनको तो बस सवेरे 7 बजे के पहले उठने को ना, काम करने को ना, बातें नहीं कर सकते ना तब।
1: बराबर है, तब का
2: खाना नहीं खाने का, 3 बजे खाना, तब तक मैं वही से भूखे रहे, वैसा था तब। रात को 11 बजे इधर चले जाते उधर, तब तक रहा देखो।
0: समय ही अलग था, अभी तो तब ही क्या था, घर के काम भी बहुत रहते थे ना, कोई काम वाली नहीं रहती थी ना,
2: बर्तन
0: कपड़े पोता पहले तो मतलब घर में
2: कुछ किया नहीं था,
1: छोटी थी आप बहुत,
2: यहाँ आकर कपड़े धोना।
0: सबसे बड़ी बड़ी थी तो मेरे से छोटी बहन, भाई, माँ, पिताजी, ये सब पर तो का टाइम ही नहीं मिलता था,
2: बस याद ही नहीं कैसे गए जीवन वो तब।
0: हाँ,
1: जब अगर कंपेयर करें आज से तो जीवन कठिन ही था, लेकिन फिर भी उसमें आपने खुशियां ढूंढ ली। 55 साल एक साथ गुजारना मतलब बहुत अच्छी लाइफ रही है, तो क्या लगता है इतना लंबा सफर आप दोनों ने तय किया है साथ में और खुशी खुशी किया है?
2: भगवान की कृपा से।
0: तो एक में एक की समझ होना है, उसने मुझे समझना चाहिए, मैंने उसको समझना चाहिए, तो कोई तकलीफ नहीं है
1: बिल्कुल।
0: आप अपना ईगो छोड़ दो, सबसे ज्यादा तो ईगो ही है, जो वो भी इंसान है, अपन भी इंसान है, हार्ड मास के बने हुए, हर आदमी से गलती होती है, इग्नोर करना सीख लो आप, गलती तो सबसे होती है
1: बराबर।
0: और गुस्सा ऐसी चीज है सबको आता है, तो उसमें कभी गुस्से उससे गलती हो गई, कभी मेरे से गलती हो गई, तो एक मेक का इग्नोर करना सीख लेंगे आप, एक मेक का ये करना सीख लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। आप उसको पकड़ के रखेंगे वो चीज को, तो कितना पकड़ के रखेंगे आप सोचिए ना, अगर एक मेक की गलती होना ही है। हार्ड मास के बने हुए पुतले अपन को, ये भगवान तो नहीं है, तो इस वजह से अगर कुछ गलती हो गई तो उसको इग्नोर कर लो और अपना आगे बढ़ते जाओ।
1: आपके जीवन सफर में ऐसा कोई क्षण नहीं जहाँ पर अनबन हुई है, ऐसा कोई प्रसंग है?
0: ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, मगर छोटे मोटे में तो एक में को समझ के चलना, समझ के चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक, अगर कई बार तो छोटी चीज बड़ी चीज बन जाती है ना।
1: बराबर,
0: ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता, मगर कभी कभी छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, आके धीरे धीरे धीरे होके वो बड़ा बन जाता है। इसलिए छोटे से प्रॉब्लम में ही थोड़ी सी समझदारी आप दिखाएंगे, क्योंकि गलती तो सबसे होती है। हाँ, तो मैं बता रहा ना कि समझदार, एक समझदार रहा तो भी दूसरा का हाथ आई जाती है। रामायण के अंदर में नग राजा ने क्या सोच के दिया था अपनी लड़की को, राजा है वो मेरी

0: की तो मस्त
1: राज करेंगी
0: राज करेंगी
2: बराबर,
0: मगर आधी जिंदगी तो इधर
2: जंगल में ही गुजरी,
0: जंगल में गुजरी। तो ये तो
1: सबका होता है,
0: तो वैसा वो सोचती थी तो फिर कैसा होता था। तो ये जीवन में ये रामायण महाभारत अपने जो ग्रंथ है, अपने जो भागवत है या गीता है, उसमें से अपने को सीखने को मिलता है। उसमें से अगर आप सीख लेंगे, ये देखो पानी पीना है तो आपको नदी के पास जाना पड़ेगा,
2: बिल्कुल।
0: आप उसको अगर नहीं जाएंगे, घर में बैठे हुए थोड़ा मिलने वाला, इसलिए आप उसमें से अगर कुछ थोड़ा भी आप 10% भी सीख लोगे आप, तो आपके कोई तकलीफ नहीं है जीवन में, बस उसी में से आपको सब कुछ मिल जाता है, आगे बढ़ो, बस हो गया।
2: अभी तो जैसे रिटायरमेंट जिसे बोलते हैं हम, वो आपका पीरियड चल रहा है। हाँ। तो आपका क्या आपका टाइम है?
0: बिजनेसमैन कभी रिटायर होता ही नहीं।
2: अच्छा, अभी भी दुकान जाते हैं?
1: 9:30 बजे रात को खाना खाएंगे तो भी दुकान जाएंगे, अभी आता होगा तो भी नहीं जाएंगे।
0: बिजनेसमैन का रिटायर होता?
1: मैं भी घर में नहीं हो रही, दोनों बहुत बिजनेस, वो भी जॉब करती है, ये भी दुकान जाती है शॉप में,
0: घर पे बिजी रहती
1: है, घर पे सबका है तो खाना देना परसना,
0: कोई रिटायरमेंट नहीं है, काम ही काम, फुर्सती नहीं है अभी। जब तक कि अपना शरीर चलता है तब तक कि अपन काम करने से आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। देखो अपने को लगता क्या ये दुकान, मगर अपन ने वो कोरोना ने सिखा दिया है कि बिना काम से आदमी कैसा नहीं रह सकता करके। साल भर जो सवेरे उठो, नाश्ता करो, फिर सो जाओ, फिर खा लो, फिर नाश्ता करो, वो जो कोरोना ने सिखाया नहीं, ये जो काम है यही जिंदगी है।
2: बराबर,
0: अगर ये काम नहीं रहता था अपने पीछे ये, तो फिर ये जिंदगी में क्या है, फिर वो पशु पक्षी हो जो, और अपने में क्या फर्क है फिर।
2: सच
0: है, आज मैं मेरा काम हाथ पैर चल रहे मेरे, तो मैं दुकान पे जाता हूँ, दुकान बड़ी अच्छी दुकान है, तो वहाँ पे अपन गए तो बहुत काम रहता है, इतने काम रहते हैं कि बिजी हूँ मैं।
2: बिल्कुल, यानी जिंदगी से बहुत समाधानी है आप?
0: समाधान है जिंदगी से, सब कुछ अच्छा है, भगवान की दया है, समाधान है,
1: चलते चलते चली जाएंगे, हो जाता बस।
0: बहुत ही सादा सिंपल जैसा जीवन ऑर्डिनरी आदमी का, वैसे सिर्फ जीवन गया है पूरा। बचपन में पिताजी का बहुत साल के बाद में मेरा जन्म हुआ ना, उसके बाद में भी क्या होता था कि इतना अनुशासन रहता था कि पूछो मत, सामने जाने को डर लगता था पिताजी के सामने।
2: हाँ, हाँ,
0: बोलने अगर कुछ अपन गिर गए और कुछ लग गया तो बोल नहीं सकते थे पिताजी को, एक पड़ती थी एक, बोलते थे अंधा है क्या, देख के नहीं चलता क्या। आज समय
2: बदल गया।
0: हाँ, बदल गया, सब देखा हुआ है अपन ने। 1950 का जन्म है सब, जब आदमी 6-7 साल का हो जाता उससे तो आदमी को मालूम पड़ जाता ना, चल रहा है सब अच्छा है, सब ईश्वर की दया है, और अभी भी काम कर रहा हूँ। और मेरे को दुकान के हमारे पुराने कस्टमर आके पूछते, अंकल आप कितने साल के हो गए? मैं बोलता हूँ 76। अरे बाप रे, बोले कहीं ऐसे कस्टमर 3-3 पीढ़ी से काम करने से तबीयत भी अच्छी रहती, माइंड भी अच्छा रहता ना, सब बढ़िया है।
1: बहुत डांटते एकदम, घूमने नहीं जाते, घूमने जाया करो, जिम जाया करो, व्यायाम करा करो, चालू रहता उसका।
0: दुकान पे व्यायाम दुकान पे व्यायाम हो जाता ना सब।
2: तो आने वाली पीढ़ी को, यानी हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि सहजीवन के लिए, ये हैप्पी फैमिली के लिए क्या जरूरी है?
0: हैप्पी फैमिली के लिए आप में एक में एक को मान देना, जैसे हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो सबसे पिताजी जो बड़े भाई जो बोलते थे वो घर में चलता था। अब घर में 10 अगर 3 भाई है, तीनों भाई अगर अपना चलाएंगे तो घर नहीं चल सकता वो।
2: बराबर,
0: तो इसलिए जो बड़े रहते उनका चलते थे, इसलिए घर में बड़ों को मान देना, माँ बाप को इज्जत देना, आप वहां से शुरू करेंगे ना, तो वो जो आप जो करे, मैं मेरे माँ बाप को इज्जत दे रहा हूँ, मेरे माँ बाप, तो मेरे बच्चे भी वही करेंगे, उसके बच्चे भी वही सीखेंगे। तो इस वजह से जो संस्कार है बच्चों को अच्छे देना आगे के लिए, और दूसरी बात तो अपने जो बुजुर्ग है ये है, इनकी बातें सुनना मानना वगैरह वो आजकल नहीं रहा। आजकल जो बच्चे थोड़े से पढ़ाए एजुकेशन होने के बाद में क्या अपने लगते कि यार ये पिताजी को क्या समझता है, ये तो 10वीं पास है, ये तो 8वीं पास है, अपन इतने पढ़े हुए, तो वो उनकी जिंदगी का उनके पास जो नॉलेज है वो आपसे लो, वो कोई स्कूल में और कोई किताबों में और कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई करने को मिलती। वो मेरे को जो 75-76 साल का जो अनुभव है, तो मैंने जो 75-76 साल गुजारे जब मेरे को मिला है ना,
2: बराबर
0: ऐसे तो नहीं मिला मुझे कोई फ्री में या किसी गिफ्ट तो नहीं मिला, तो उतना मेरे को देना पड़ा, होम आहुति दिए मैंने 75 साल के, जब मेरे को जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे पास मिला। वैसा आप बड़े बुजुर्ग से और मान रखोगे, उनकी बात सुनोगे, उनके पास कुछ बैठोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आपको जीवन में बहुत काम में आएगा वो, ये मेरा कहने का मकसद है।
2: और यही चाहते हैं हम कि इस प्रोग्राम से हम यही, हमारी नई पीढ़ी यही जाने कि क्या थे वो, कैसा जीवन था, इतने साल आपने कैसे हंसी खुशी

0: जारे है, उसमें भी उतार चढ़ाव है, खुशियां है, गम है, सब साथ में, क्योंकि जीवन है मतलब ये सब कुछ होना ही है, लेकिन उसमें भी आप पक्का हाथ पकड़ के चले हैं, एक दूसरे को संभाल के चले हैं, एक दूसरे का साथ लेके चले हैं, तब तक ये जीवन अभी इतने सालों तक साथ से और खुशी से गुजरा है। तो यही चाहते हम कि यही सीख हमारी नई पीढ़ी को इस प्रोग्राम से मिले।
1: और आप जैसे बड़े बुजुर्गों का मान दो, सम्मान दो, उनके पास बैठो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा जो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा। आप उनके पास बैठो।

0: इस प्रोग्राम से मिले।
1: और आप जैसे बड़े बुजुर्गों का मान दो, सम्मान दो, उनके पास बैठो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा जो किसी यूनिवर्सिटी में सीखने को नहीं मिलेगा। आप उनके पास बैठो, उनके पास सीखो, उनसे बात करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो वो आपको जीवन में आगे बहुत काम में आएगा। वो आपके पास पैसा हो वो काम में आएगा, जितना उनकी ये बातें काम में आएंगी, तकलीफ नहीं होंगी और आप हमेशा अच्छे रहेंगे। बिल्कुल,
0: आज स्टूडियो में आया, इतनी सुंदर बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई, इसके लिए आकाशवाणी चंद्रपुर की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं।
1: बहुत बहुत आभार।
0: आपका ये सहजीवन ऐसे ही आगे भी चलता रहे, स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आप हंसते रहे, ये हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल पंकराज और साथियों की आवाजें थी जिस रोशन की तर्ज थी और श्रोताओं यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश
1: कुछ रेशमी ख्वाब कुछ मखमली अंदाज

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार, और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है, तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और दो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जागती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहे हैं, अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार खाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है सुनने वालों को, संगीत श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें।

एक समय ऐसा था श्रोताओ जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इशारा फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता हैं आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल मौसम आशिकाना बिंदिया आवाज़ तस्वीर शायद कायनात तरन्नुम तमन्ना कुदरत प्यार राज मुश्किल मुमकिन खफा बहाना घर दीवाना बादल बेकरार अच्छा चलते। और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारत सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा तो हम चलते हैं कब वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास आता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही है, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है, तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना दे हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब लिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया।

चलाया इन्होंने और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैदल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है, ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आज़ादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक, साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत न हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है। वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियां, उनके पंक्तियों, उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और ख़ासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज़ तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, तो प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीत में मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना, प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते का ये गीत, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है, और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है। एक इन्होंने ही जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफ़र तो सभी जान

लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं। और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है। मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी। बहुत मजा आया था जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो।

0: तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते। हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जहाँ सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं
1: स्पर्धेचं यंदा 125वं वर्ष आहे। आयपीएल क्रिकेट स्पर्धेत आज दोन सामने होणार आहेत। पहिला सामना दुपारी 3:30 मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स या संघात मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर होईल। दुसरा सामना संध्याकाळी 7:30 कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघांमध्ये कोलकाता इथं होणार आहे। बिहारमध्ये रांची इथं आयोजित फेडरेशन चषक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत गुरिंदर वीर सिंग यानं पुरुषांच्या 100 मीटर धावण्याच्या स्पर्धेत राष्ट्रीय विक्रम नोंदवत सुवर्णपदक जिंकलंय। याबरोबरच तो आगामी ग्लासगो इथं आयोजित राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठीही पात्र ठरला आहे। रशियानं काल रात्री युक्रेनची राजधानी कीववर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला केला। या हल्ल्याचा फटका शहराच्या मध्यवर्ती भागात सरकारी कार्यालय, निवासी इमारती आणि शाळेजवळच्या बांधकामांना बसला असून यात किमान 10 जण जखमी झाल्याचं वृत्त आहे। पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात आज एका रेल्वे मार्गावर झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात 30 जण ठार झाले तर अनेक जण जखमी झाले। क्वेटा इथल्या चमन फाटक रेल्वे स्थानकाजवळ हा स्फोट झाल्याचं वृत्त आहे। ठळक बातम्या पुन्हा एकदा। भारत अमेरिका परराष्ट्र व्यवहार मंत्री स्तरावर महत्वाची चर्चा। होर्मुझची समुद्रधुनी खुली करण्यासह इतर मुद्द्यांवर इराणबरोबरच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आणल्या असल्याचं ट्रम्प यांनी प्रतिपादन। इबोला प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत नागरिकांनी कांगो, युगांडा आणि दक्षिण सुदान या भागात प्रवास टाळावा अशी केंद्र सरकारची सूचना। महाराष्ट्रातल्या 5 खासदारांसह 12 जणांना संसद रत्न पुरस्कार जाहीर। आणि 125व्या फ्रेंच खुल्या टेनिस स्पर्धेला आजपासून पॅरिसमध्ये प्रारंभ। याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया 3:00 आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात। नमस्कार। श्रोते हो, आता आपण

वही रहमान जी पर फिल्म आया गया। ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझमें है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज़ मन भावन को भी अपने जो है घर का चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। समत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता मैं लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है। श्रोताओं, क्या आपको मौसम प्यारे लगते हैं?

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती है कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज ऐसे भारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकिजा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओं, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

आपको भी कभी ऐसी मशक्कत करनी पड़ी श्रोताओं क्या, किसी खास जगह को ढूंढने में, किसी जगह पर जब आप पहली बार गए? एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऊंट की सवारी तो प्रायः सभी समुद्री तट पर उपलब्ध है और पूरी मेरे घर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, बच्चे भी तो ऊंट की सवारी किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल आपने जैसा पूछा, मौसम तो होते ही हैं प्यारे, हर मौसम की अपनी अलग विशेषता है और पकवान भी, सर्दियों की प्रतीक्षा रहती है हमें क्योंकि हमारे लखनऊ में निमिष सर्दियों में ही तो मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं, राजस्थान में ऊंट की सवारी यहाँ के पर्यटन का एक मुख्य और बेहद खूबसूरत आकर्षण है। थार मरुस्थल के सुनहरे रेतीले टीम के बीच ऊंट पर बैठकर सूर्यास्त या सूर्योदय देखना एक जीवन भर न भूलने वाला अनुभव होता है। ऊंट पर बैठते और उतरते समय थोड़ा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि जब ऊंट अपने पैरों पर खड़ा होता है या बैठता है तो आगे और पीछे की तरफ एक जोरदार झटका लगता है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मौसम किसे प्यारे नहीं लगते, हमें तो नवंबर और फरवरी के महीने का मौसम बड़ा प्यारा लगता है जब सर्दी थोड़ी सी कम रहती है। ऐसे मौसम में हाथ डाले दूर तक चलने में आनंद आता है जब चांदनी रात हो।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती है कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड।

एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती है कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

हेलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं।
1: सुनो तो जरा, हमको है ये कहना, वक्त है क्या तुमको पता?

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा, क्योंकि जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है दुनिया पर वही राज करते हैं। अगर तूफानों से लड़ने का जुनून हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साथियों, जिंदगी बदलाव तभी आता है जब हम खुद को चुनौती देते हैं। एक बीज अगर मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहना चाहे तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। पेड़ बनने के लिए उसे मिट्टी फोड़नी पड़ती है, अंधेरे से बाहर आना पड़ता है, बारिश और धूप सहनी पड़ती है। उसी तरह इंसान को भी संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। तो आप भी बड़े सपने देखिए, खूब मेहनत कीजिए, हिम्मत के साथ डर का सामना कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाइए।

साथियों, जिंदगी आसान रास्तों से नहीं, चुनौतियों से महान बनती है। इसी के साथ स्पन होती है आज की त्रिवेणी।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
3: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
2: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने

0: ये भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
2: These were the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इस शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी, हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है, गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक कही। अमेरिकी विदेश मंत्री चार की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। 26 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनागपुर में दूसरे स्थान पर, कांग्रेस के रजाक तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान है। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियांग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियांग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियांग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को

0: गलत स्कट जाने को देखने जारी की है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तकों के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कहा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदन के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिट्ठ ने बताया कि चार आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जयराम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए आरोप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन और संस्था 21 जून प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम एक वर्ष में 125 के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट पहली खेप भेजे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसा समाचार जानने के आप हमारे सोशल मीडिया @HIIN न्यूज इनको फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं, कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी एटा के मन फाटा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। धमाके के बाद एहतियात तौर पर पेशावर जाने वाली जावर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सके क्योंकि मलबे दबे यात्रियों को अभी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांशी प्रांत में खान घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत यू फेंग ने शांसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिस्सक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी एथशी पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली यानिक सर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी मामरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेलों के साथ जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स

0: और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम को प्लेऑफ में जगह मिली। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ पर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तन के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। निमेश कुजूर रजत और प्रणव प्रबोध ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुक्षेत्रीय सहयोग के लिए कई संकल्प गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एचआईवी, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रीय दिवस अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की हर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरी धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन बन का था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का छोटा, यादों का मीठा राग, जज्बा की नरम चुम, प्यार की चुवन, अपने पन का काम, छाया गीत, दूसरा 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: चेतन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट में किशोर कुमार की आवाज आपने नहीं, मजरूह सुल्तानी के बोल सचिन बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहते सुरों की सरिता घोलती है आप जीवन में शास्त्रीय बारीकियां रागों की, श्रृंगार रू का सरबीता दौर ले कायम है संगीत की मध पाठशाला। रोज सुबह और शाम 6:45 की सरिता सिर्फ विविध

फिल्म माया का दो गाना मोहम्मद लता मंगेशकर का गाया बंजु सुल्तानपुरी की को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम सदा बीच कहीं दोपहर में ठंडे शर की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीत कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत स्वागत है सभी का। चलिए आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल रहे हैं। मनचाहे प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने को संगीता श्रीवास्तव का प्यार नमस्कार।

एक बार करा दो इस फिल्म में शुभ होसले मुकेश की आवाज़ें आपने एसएच बेरी के बोलों को सुर में ढाला ओपिनियन ने इसको सुन चाहा दगंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे तिथराज पांडे दिलीप शर्मा ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी इसी गीत को सुनना चाहा सिकंद अली खान बद्दीन शमसुद्दीन की बा के पास और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से नवीन नगर से ये हैं चंद हादोले महादोले गंज डुंडवारा प्रदेश से बीपी गौतम सरिता अनन्या खुश

प्रोग्राम की बनाई उस पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और ईशदास ने। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शायर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिन जी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश रूप सिंह और

अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतुराही से प्रवीण कुमार और इसी गीत को नचा गुरई बुरी विली बेस्ट मुंबई से अंशिका ने। सुन रहे हैं विविध भारती से करम चाहे गीत।

शोर मैशोर इस फिल्म का गाना था, मजर फिल्म मंगेशकर गाया गीत संगीत रविंद्र के, गणेश कुमार की फरमाइश है ये से, और भरत यादव का शर्मा का सक्सेना इन फरमाइश है बदाई उत्तर प्रदेश से, और हमारे शोध हैं तहसील तिहारा अकोले महाराज से कुमार आड़िया, भारी पास पायल श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे हैं द ट्रेन फिल्म मोहम्मद रफी मंगेशकर गाया आनंद बख्शी की थे राहुल बर्मन की रुस्ती और इस गीत की फरमाइश की हंडेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंद्रा शर्मा कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा चेतन कड़वासरा डुमराव बिहार से वल्ला अंसारी आसमान आज अंसारी और गीत की फरमाइश की लीला बेन स्मिता भारती निधि सेजल मनाली ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से और अब आज के मंच है गीत क्रम में इतना ही दीजिए इजाजत संगीत श्रीवास्तव को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। अट्टे तंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चरण वृक्ष।

0: बकबक से मेरा सिर करने लगता है।
1: बोली चाय एकदम गर्म है। अरे सुनी जरा रेशमा जूड़ा तो देख।
0: अरे तो एकदम अंता की मुठिया जैसा केश विन्यास है।
1: वो दिन को
0: कहां
1: तू को तूने शायद शैम्पू किया है।
2: वाह
1: कितने खूबसूरत बाल हैं।
0: वर्षा की घनघोर हटाओ तेरा।
1: सुमन सुमी बुद्ध सुमन को कहा। अरे कितनी अच्छी लग रही
3: है सच में।
1: सफेद शरारा और हवा में लहराती वे चुन्नी क्या बात है।
0: अरे यार से लग रहा जैसे पंचनी थी तैरती हुई चली जा रही
1: है। तंग आ गई मैं तुम्हारी कब से। न कोई दिल है न कोई एक्साइटमेंट
0: है। क्यों नहीं तुम तो एक्साइटमेंट का जीता जा रहा हूँ। गोरी गोरी अपनी पतली प्यारी सी लिखा जैसे
1: कटनार की गली यही कहेगी ना। ले कम हो सका। हाँ तो बैंक मिस सुमी आपको नई किताब सुनाने आ रही है।
4: हाँ

0: ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। अरे ये भी चंदन जैसे हैं। पर जरा साफ से बात करे ना मेरे फ्रेंड।
1: माँ तू नहीं सुन रही।
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू जाइए मिस सुमी।
1: अरे समोसा नहीं
0: कोई नखरा वखरा चलेगा। कम ऑन।
1: और रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू घेरता महकता पवित्र करता नंदन कितना प्यारा कितना सुंदर है वृक्ष चंदन। जी चाहता है इसे आंखों में अंज लूं शब्दों बांध लूं मन में समेट लूं कल्पना से सार दूं कर लूं वंदन है वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई मैं तो ली चलेगी समी
1: आज नहीं भैया होंगे मैं इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय
2: बाय बाय।

0: ऐसा।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का आशा गया है। हाय हेलो नहीं नमस्ते। आज वो भारी कबूतरी नहीं आई।
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए साहब, आप मेरी दुख का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार जिगृत हो रहे हैं, बोलती है तो जैसे कोई कुहकुटी है, और चलती है तो चलती तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उस तेजते की?
1: अरे भाई गजगामनी का, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे, अरे बटर लग है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं भारी दो है, झेलना पड़ता है उसे। लिखते इतना मोह कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसा खिलना और शर्माना, महकाना धरती का करण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है खिलती गना जूती लताएं, तपसी से चंदन वृक्ष, तब मुझे बहुत अपनते हैं, जिस दिन मैं न जाऊं उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो पोस्ट कर दो।
1: नहीं रीमा, बहुत प्रिय है वो, अखिली अनछुई उसमें नहाई पावन की तरह, जिसकी हलकों में न जाने कितने सपने हैं, मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन हो गए अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? दैजी की तरफ
4: बहुत अच्छी है, घर में लोग अच्छे से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला क्या?
3: तार वो तो नहीं मिला, खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या था तार?
4: यही कि रात के दिन से हम लोगों का रिजर्वेशन।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज आना जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: तुम्हारे वार्ड ने बात कर चुका, तुम जाकर पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे टैक्सी लेकर आओ।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने क्लासेस क्यों मिस करूंगी? सब बताओ ना भाई क्या बात है।
4: तो कह दूं? तो पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
3: ब्याह?
4: इसी माह की 25 तारीख को तेरा दी, और इसीलिए मुझे लेने आया।
3: ये तो क्या कह रहे हो भैया, दिव्या मुझे ऐसा मजाक नहीं लगता।
4: मजाक नहीं सुमी, सच, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
3: उससे पूछे नहीं और सब कुछ तय करा।
4: देख परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी कई खराब है लड़का, मैकेनिकल इंजीनियर, वो बाहर ही हुआ है।
3: ओ भैया
4: ठीक ही है। एक रही तुझसे पूछने के, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक सकते हैं वही करें।
3: हाँ तभी आप भुगत रहे हैं, रईस खरे की लाड बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया, आपकी जिंदगी।
4: सुमी बस प्लीज दुख तिरक मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है।

0: पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उन घरवालों से मिलकर बहुत अच्छे लोग हैं और लड़की बहन मंजू बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन मैं चलता हूँ, तू तो रहना।
1: सामान बांध लो, सब लाट सब है, ते बिना पूछे ही सब तय हो गया। कहते एमए करेंगे और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना। चल बेटा जा सोनी पर, एक खत तो ले दीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चरण वृक्ष सर्प घेरने वाले, मतलब मेरा ब्याह हुआ है, इसी चीज पैसे आ जा, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोली और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया आ गए।

0: शुक्र मत जाओ,
1: क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराना कैसा, तभी ब्याह होता है। शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: और मुझे शीशे में मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सब दिखाई दे रहे हैं। मेरा होगा ना
0: सब बढ़िया होगा। अरे दिनों के लिए बस अपनी कलाएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम ले जा रही है।

0: सुनचाई जल्दी क्यों? शोमी के आने रुक जाती बेटी।
1: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
0: अच्छा बेटी ये बताओ
1: अंकल,
0: शोमी तुम्हारा तुम्हें क्या लगा?
1: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोदी।
0: हाँ।
1: सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और अपने कहीं जिंदगी में खो जाए।
0: हाँ।

0: अभी घूम हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठे। अरे अब तो कई दिनों तक कर बैठना होगा है भैया। वैसे अभी है बहुत सुंदर भैया, पापा की सन की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या क्या है, पारुल दी के पैरों की धूल भी है ये। इससे कह दो मंजू कि इस आईएस बने आईएस, समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है ना अभी।
2: अरे सुनो सुनो ना, मैं मिल ना ले। अरे ताल ताई अभी दीजिए ना, हम जोड़ी की अभी तार जोड़ी है। देखो देखो
0: जरा सा आइए आइए भैया,
2: तुम भी चलो कितने के लिए।
1: मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक लल्ला जी।
4: अरे भैया दुल्हन है कि एक
2: चांद टुकड़ा मसाले हमारे भी भैया
0: अच्छी चाय पीजिए भैया।
2: अरे तुम आप भी

0: क्या था? मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग रखी है, मैं ऑफिस का सारा काम है, कितनी सारी फाइलें निपटानी है, और तुम कहती हो मर गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़के को पिला दो, मेरे कमरे बैठी है।
1: वो भाई है भैया, अभी परसों तो तुम्हारी उनका ब्याह हुआ है, हम लोगों ने विदा कर लाई है, कितनी प्यारी है भाभी।
0: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा बैठा दिया और तुम्हारी भाभी हो, ये भी भाभी है, ये भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भी, वाह, लो चाय पियो, लो तो भाभी, तुम भी पीना, तुम भी पीना,
2: फिर तो रोक नहीं सकता, अरे इसकी शादी कर दी गई है, हे भगवान, बहु का क्या होगा, डॉक्टर ने कहा चाची बहु आते ही घर लग गया, तब क्या हुआ?
3: अरे बंदी तेरे पाल के साथ
0: क्या कहा?
2: अरे
0: मैं पाल,
2: अच्छा
0: तुम पागल हो,
2: तुम
0: पागल हो, तुम भी पागल हो, क्या
2: तुम भी
0: पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की, मैं पागल, मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रे, मुझे क्या पहना दिया है? हार अभी ये लो लूटो लूटो, पाल का ब्याह है, झूमो नाचो गाओ।
1: भैया भैया ये क्या रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए, मैं बाबूजी को पकड़िए,
0: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, सब पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
4: हूँ,
0: मैं पागल नहीं हूँ,
1: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
4: क्या मंजू बेटी इतनी घबराई क्यों हो?
1: मेरे को पड़ा पड़ा है बूजी, आइंस्टाइन बोल रहे हैं,
4: क्या कह रही,
1: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कब फाड़ रही, अच्छी बुआ सबने पकड़े हुए हैं,
4: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर के यहाँ तुरंत ले जाना होगा, ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
1: अच्छा
4: भाभी, राहुल, विकी, तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
1: अच्छा बाबूजी,
4: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
1: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
2: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इस वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे पहले भी पड़ चुके? बताइएगा मंजू जी, आपको मेरे से
1: सच ही बोली हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं,
2: तो फिर
1: बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी मिल गई, बाहर भी घुमाई है, लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
2: ट्रेजेडी?
1: हाँ भी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया, भैया ने बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों ना सोए ना ही किसी बात की, उसके बाद ही ब्लड अटैक पड़ा, इलाज किया ठीक हो गई, मैं की नौकरी भी गई,
2: वहां रहते हैं?
1: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तार करती है, कभी बहुत गई,
2: और डॉक्टर्स क्या कहते?

0: उम्मीद दिला रहती हैं। सब हो जाएगा, वे ठीक रहती हैं, तभी तो उनका ब्याह किया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ा होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा अब आप काम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना बुलाती हूँ।
1: नहीं मन जी, अभी भूख नहीं है।
0: तो लेकर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुधर जगह प्यार किया है अपनी लाडली बेटी। रईस खराना शानदार हवली, 4-5 गाया, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सब पागल थी। इससे छोटा मेरा गला घोटती थी। देखिए मुझे मरने की क्या जरूरत है डेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चेतन वृक्ष से संघर्षु की सर्प लिपट गए हैं। बड़ा लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी बी, कैसा निश्चय भूला जाए, कुछ घंटों में ही मिला गया है कि संभल में पा दिया है मुझे इस मानी ने। मुझे ही करना होगा, लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या ले भैया?
2: क्या बताओ बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था। अगर सावधान न बरती जाती तो शायद वो उसका कहीं खोल देता।
0: बाबूजी
2: उस इंजेक्शन ने जा रही थी, वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, इस पाप की सजा दे रहा है मुझे।
1: क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कहता हूँ मैं? फिलहाल तो इंजेक्शन देख सुला था गया है। डॉक्टर आप कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: सुबह सड़के फोड़ के कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले लीन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भाई की शादी के आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबू।
2: अरे बेटे की मोहब्बत हो तो क्या समझोगे?
0: ठीक कह रहे हैं आप, उसके लिए क्या कई सौ की जिंदगी गांव पर लग जा सकती है।
2: मंजू, मंजू।
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी ये होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पहेती।
0: सच कह रहा हूँ, ये सब सहन कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी इससे छोटी। उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बुझी।
2: अब बस एक उपाय बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूँ उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाए तो उसे बुला लूंगा।
0: भाभी को लेके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आ रही
2: थी।
4: आगे आप लोग, सुमी आई है। जी कैसा रहा?

0: सुमी तो कुछ उठती क्यों नहीं, इरिच कहाँ है?
1: मम्मी प्लीज, के सब एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई, उसे आराम करने दे।
0: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना बड़ा हुआ क्यों है? देखूं तो? अरे जी तो बड़ा तेज बुखार, जल्दी डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर ले चल। अरे जाना जरी से डॉक्टर को ले आ।
1: अरे हाँ जाता हूँ, आप उसके पास बैठी।
0: क्या हो गया?
1: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार।
0: हाँ जी डॉक्टर साहब, कितना तेज बुखार है?
2: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे बस को तो बुखार है, ऐसा करता हूँ, इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाहर से मंगवा लीजिएगा, चाचा डे पर देते रहेगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
0: ठीक है ठीक है,
2: और घबराने कोई बात नहीं।
0: ठीक है, जा बेटा दवाएं ले आ।
1: सही डॉक्टर साहब, आइए आपको दरवाजे छोड़ देता हूँ। तुम्हें सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठेंगे।
0: ठीक है,
1: आपसे जरूरी बातें कही, आइए।
0: हाँ हाँ बोल बेटा, क्या बात है?
1: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
0: धोखा? कैसा धोखा?
1: हाँ मम्मी धोखा, बात ये कि रितेश को पागलपन के दौर पे महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में रहा। वो तो कल शाम को फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में। ड्राइवर ने हमें कुछ बताया? मम्मी नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
0: नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब होगा राजेश, मेरी मासूम बच्ची सुनिए,
1: इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और एडी ने तय कर लिया।
0: क्या?
1: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश ब्लेंड हो जा रहा है मामा, जान पर भी हमला कर। अब हम उसको नहीं खोना चाहते। हमें एक बार ठीक हो जाए उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, नहीं मां उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात से हम निभाएंगे।
0: अच्छा
1: ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
0: ठीक है। अपने आप से लड़ते हुए वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों था? अगर रीमा और डॉक्टर राज न होते क्या होता मेरा? मैं टूट चुकी थी और मैंने फिर बदले में क्या था? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर वो क्यों तो रहे हैं टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे वे हर बार समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं क्या करूं मैं?
3: अंदर आ सकता हूँ?
4: ओ आप आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खरा? कैसे वो? और जीजा जी बच्चे तो क्या ना?
3: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
4: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले?
3: यहाँ रहकर भी क्या दूंगा सुमी, एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी

0: अनशा से जी जाए तो बोझ बनती है, हर लम्हा बोझिल हो जाए। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुम अपने चारों बना रखा उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
1: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया की समझ मुझे जीने देगा?
0: समाज वही साथ क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन तनाव और दुख दिल दिल कर जल के ये छोड़ है तुम्हें और लोग गल रहे, लेकिन तुम्हें क्या हार रहे हैं हम ही? क्या मिले चिलाओं से टाने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
1: राजन,
0: सुमी
1: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
0: सुमी।
1: और अब चलो
0: सुमी।

0: छोड़कर मत जा, मैं बहुत थक गई हूँ और अब चिंता हूँ।
1: ओ सुनी, मैं जीत गया, सुनी मैं जीत गया। शायद अंदर फिर से सांप गए
0: और बिखर गई है माधुकंठ।

0: ये आप सुन रहे हैं नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा उन त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: वाले उन यादों के। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा की है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977 दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 13
2: जहां

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्हें बनाई फिल्म रंगमंच पर ही रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे लंबी बातचीत रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक सिरकर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूले होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे, इन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं ये की बातचीत। ये है रीएप एपिसोड 1।
1: पार्टी हुआ तो हम आए श्रीनगर में, उसके बाद जो है कुछ दिन होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंड फादर को फोन किया कि आपके लिए एक ट्रक खरीद लिया है यहाँ कोलीवा में।

0: थे
1: जी,
0: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
1: में।
0: तो हमारा जो करा था उसका नाम T-51
1: जी।
0: टी मतलब होता है टी,
1: अरे
0: ओरिजिनल टी थी वो।
1: ओह गॉड।
0: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के जाते थे। कोलीवाड़ा में कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं कभी ब्लैक बुक लिखा करता
1: जी
0: के फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता, डायरेक्टर रमेश तलवार, म्यूजिक मैकी सिंह, ऐसा लिखता था।
1: जब तक छो नहीं रहा
0: है। ना कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड लिखा होता था, उन्होंने भी कई बार नाम पढ़। और कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में आ गया कि यार ये मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता। इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम सौतेला। तो मुझे उसके लिए ले जाया गया, छोटा मोटा टेस्ट लिया, सेलेक्ट हो गया। और मद्रास एवीएम में भाई उसकी शूटिंग थी।
2: एपिसोड 2 में रमेश तिवारी ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों बाद।